नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भाजो केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

निज कर दय करी है, सब बैरन को आज संगरी है। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेवकियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बाध कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, घाट घाट के पाट पाट की जाना। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्व काला। कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा।
जिन नर

ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पैरदास।

सर्म खंड की बाणी रूप तिथ काढ़त कड़िया बहुत अनूप तांकियां गल्ला कथिया न जाए जे को कह पिछे पछुताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिद्धा की सुध तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिद्धा की सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग साध संगत जी, आप जी वडभागी हो, संध्या दे दीवान दिया हाजरियां भरदियां पंथ दे प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनिये हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी रस भिन्ना शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता है। शब्द कीर्तन उपरंत जो पावन पवित्र बचना दा पाठ आप जी ने सरवन कीता है, ए पाक बचन जगत तारक पिता धन धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे उच्चारण कीते जप बाणी विच गुरु के प्यारियो ए 35वीं पौड़ी दा पाठ आपने सरवन कीता है। क्षमा करना 36वीं पौड़ी है। इस पौड़ी अंदर गुरुदेव ने सर्म खंड दी रूप रेखा व्यंग कीती है। सर्म खंड जिवें धर्म खंड ज्ञान खंड दी व्याख्या आपने पहले सरवन कीती है। अज सर्म खंड दी व्याख्या धन गुरु नानक सच्चे पातशाह इस पौड़ी अंदर कर जिथे इस पौड़ी दी विचार करिए उथे अज धर्म युद्ध दे दो सूर बीर कौम दे योदे जिन्हां ने अज दे दिन शहादत जाम पीता उन्हां नूं भी चेते करांगे कुछ मिंटां लई। आओ धन गुरु नानक सचे पातशाह जो इस पौड़ी अंदर विचार जार कर दे पहला ए शुरुआत करिए। गुरुदेव दा पहला बचन है पौड़ी विच ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। पिछली पौड़ी विच सतगुरु समझाउंदे ज्ञान खंड दे विच ज्ञान दा प्रचंड। हुण ज्ञान जेड़ा गुरु नानक दे घर दा ज्ञान गुरबाणी दा ज्ञान ब्रह्म दा ज्ञान ते दुनियावी अखरी ज्ञान विच जामी आसमान दा फर्क है, बहुत अंतर है। दुनियावी जेड़ा अखरी ज्ञान है उनू प्राप्त करन वाले ने अक्सर गुमान कीता बेशक समाज संसार विच ते हिस्ट्री विच पढ़ के देख लो या विचर के देख लो हमेशा अखरी ज्ञान नाल ही
मनुखी जीवन विच गुमान पैदा होया, अहंकार पैदा होया, अहं बुद्धि दा दृढ़ता नाल इस्तेमाल कीते मनुख ने अखरी ज्ञान हासिल करके। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बाकमार एक पौड़ी उच्चारण की ज्ञान लई। एक विद्वान ने सारे वेद पढ़े, फिर इनी मुशक्कत की कि उन्हें सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। मुकद्दस ग्रंथ पढ़न तो बाद चाहिदा सी कि जीवन दे विच वधिया सील सुभाव हुंदा, सहज ते शांति हुंदी उस ज्ञान नाल, पर उन्हें कांशी दी धरती ते डोंडी पिटवाई कि जेड़ा चाहे मेरे नाल ज्ञान चर्चा कर सकदा। भाई गुरदास जी बचन करदे दी शर्त हुंदी कि जेड़ा बंदा मेरे नाल चर्चा करेगा, मेरी शर्त है जे मैं शिकस्त खा जावां ते मेरे सारे ग्रंथ हो लै लवे। लफज वैसे विद्वाना ने खो लेना लिखिया खो लेने, ते जे विरोधी बंदा मेथों हरविया ते मैं उदे सारे ग्रंथ खोलांगा। ऐदां दियां गोष्टां कर करके उन्हें कई उष्ट ऊठ जड़े सी ना मुकद्दस ग्रंथां नाल विद्वाना नूं हरा हरा के ना लद ले उठ। उजैन नगरी विच डौंडियां पिटदा होया आ गया उजैन नगरी। इत्थे आके जदों डौंडी पिटी इत्थे दा राजा सी भोज। कहावत बड़ी प्रसिद्ध है किथे गंगू तेली ते किथे राजा भोज। पर बहुतात असि वो लोग हैं जिन्हां ने सुनी सुनाई ये कहावत इस्तेमाल की है, पर भाई गुरदास जी ने बाणी विच दर्ज की गल उथे ज्ञान दी है। ध्यान देना, मैं थोड़ा होर संक्षेप कर देवां। ज्ञान खंड की है, डौंडी जदों पिटाई ते राजे नूं पता लगा कि मेरे राज विच डौंडी पिटी जा रही है, विद्वान ते मेरे राज विच भी बहुत ने, पर जदों इत्थे दे विद्वाना ने सुनिया कि ते ओ विद्वान है जो किसे नूं बख्शदा नहीं है, बहुत विद्वान है, हर बंदा उहदे सामने विद्वान जिहड़ा है शिकस्त हार खा जांदा। खैर राजा भोज नूं मिलके उन्हें समा नियत कीता ते इधरों राजे ने भी अपनी नगरी दे विद्वाना नाल राबता बनाया ते कहन लगे गोष्ट करो, कोई तैयार नहीं है। इन्हां विद्वाना ने इकट्ठे होके ना एक बजुर्ग दा साथ लिया ते उन्हूं कहन लगे हुण की करिए। बजुर्ग ने एक बड़ी बाकमाल गल कही जो गुरमत दी कसवट्टी ते खरी उतरदी है। बजुर्ग कहन लगा, मित्रो पुत्रो सजनो एक गल सुनो, जिस ज्ञान दे पिछे गुमान होवे ना उसनो हराउन लई कोई ज्ञानी नहीं चाहिदा। मैं फिर दोहरान लगा, जिस ज्ञान दे पिछे गुमान होवे उसनो शिकस्त देने लई हराउन दे लई कोई ज्ञानी नहीं काम आ सकदा। महाराज फिर ज्ञानी नहीं इहदे विरोध विच खड़े ते कौन खड़े? बजुर्ग कहिंदा इहदे सामने कोई मूर्ख बिठा दिओ, हर जगह एक बाणी दा गुरवाक आप सुणदे हो ना, मूर्ख है नाल ना दूजी है। थोड़ा ध्यान देना,
क्योंकि गुरु दिया बातां करन लगे हैं, गल केवल कथन कर दे हैं, गुरु दी ही करनी बन दी है। गुरु दी गल, गुरमत दी गल। समा नियत हो गया ते हुण यह भी लभना बड़ा औखा है कि साड़ी नगरी दे विच मूर्ख कौन है। दुनिया दे विच ऐसा कोई भी इंसान मूर्ख भी नहीं कहता कि मैं मूर्ख हाँ। कदी किसे बंदे ने कहा मैं मूर्ख हाँ, हाँ ये अलग गल है कि गुरु कोल असी आके सारे ही कहने दाता मैं मूर्ख, मैं मूर्ख की केतक, केतक बात है, कोट परादी तेरे दर ते आने वाले करोड़ा ही तर गए, मैं बहुत मूर्ख, बहुत मूर्ख। गुरु नानक साहब आप खुद अपने आप नू वाणी विच ऐसा कहंदे, मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खोदाया। इहदे मैं अर्थ ना करा क्योंकि गुरु नानक साहब बचन करदे ने मन, ए मन लफज जिहड़ा ना इहदा अर्थ माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है। ए फारसी दा लफज सिद्ध करदा कि इहदा अर्थ है मैं। मन दा मतलब है मैं। कमीन साहब कहिंदे ने चलो मैं उल्था कर ही देवां, कमीन दा मतलब है मैं कमीना, बहुत कमीना। अगला बचन इदों भी वड्डा, कम त्रीन बहुत वड्डा, कमीनिया तो भी वड्डा कमीना। चाल पर मेरे तुल तू दरिया दे लै, तू दरियाओ खुद आया। ये भी भेद है, कोई गुरसिख दे रसना तो खुदा अल्लाह लफज कोई सुन ले ते असी खुनस जाने हैं तो मुसलमाना का है नहीं। ये सब रब दे किरतम नाम ने, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कोई बोले राम राम कोई, ये खुनसना नहीं चाहिए। ये सब रब दे किरतम नाम ने, मुसलमाना दे प्यो दा अल्लाह नहीं है। जिवें भगत जी कहते ना आपन बापै नाहीं किसी को भावन को हर राजा, रब ते भावना करके होंदा जिदा भी है गा, चंगी भावना ओदे लई होवे ओदा ही रब है। रब किसे दे प्यो दी कुल दा नहीं, ओदी दी कोली कोई नहीं आ गई, वो सब दा ही है। खैर जदों समा नियत हो गया ना ते हुण प्रॉब्लम ए आ गई है, विद्वाना सामने मूर्ख कित्थों लभीए जिन्हों कुछ भी नहीं आता, जिदे को अखरी ज्ञान ही ना हो। एक विद्वान घर दिया कुछ वस्तुआं लैन ले गया ते प्राचीन समय दे विच जदों घर विच तेल दी लोड़ पैंदी सी ते लोक जांदे सी दुकान दी बजाए कोलू ते, कोलू जिथे तेल कढ़िया जांदा। वो जो उत्थे गया ते कोलू दा ए मालक ते नहीं सी है, ते उत्थे दा ए चाकुर सी। चाकुर मतलब नौकर सी है, पर एक बैल जोड़िया होया उनू चलाउंदा रहिंदा, कहानियां पीड़दा रहिंदा, तेल कढ़दा रहिंदा, कोई लैण लई आवे दे वी दिंदा। गुरु के प्यारियों दे शरीर वाले जदों इन्हें देखिया, पैरां च कदी जोड़ा नहीं सी पाया। वो समा भी कुछ ऐसा सी प्यारियों, उस समय हर बंदे कोल पाउण लई पैरां च जुत्ती भी नहीं सी हुंदी, कपड़े भी पहनण लई इन्ने नहीं सी हुंदे जिन्ने हुण असी पहनदे हां। हर बंदे कोल घर विच किन्ने कपड़े, खुद दोनों नहीं पता कि मेरे को कपड़े किन्ने। पर वो समा सी बाबा धन्ना जी वर्गे भगत ने भी रब कोलो ये दोने चीजा मंगिया ने, कपड़े भी ते जुत्ती भी, पनिया शादन कपड़े नू कहिंदे ने, कपड़ा मंगिया ते नाल जुत्ती मंगी पने। खैर मैं संकेप करा,
आखिरकार उन बंदा मिल गया जड़ा विद्वान इथे आया तेल है के विद्वान बारों गुमान भरिया जड़ा आया उदा मुकाबला इधर ना करा देता जाए। रहस्य विच ए सी के जे हार भी जाएगा ते एक मूर्ख नो विद्वान जे हरा गया ते कोई वड्डी गल नहीं होएगी। इन्हें राबता कैम कीता एदा ना है जी गंगा तेली। इन आम लोग कहिंदे ने गंगा गंगू तेली। पैरां दी हालत बड़ी माड़ी है, कपड़े पता नहीं कदों दे फटे पुराने पहन रखे ने, इशनान पता नहीं कदों दा कीता होया। खैर दो तीन विद्वानों नूं इकट्ठा कीता, पहला ते दो दिन लग गए दे तन नूं सोध दे साफ सुथरा कर दे। सारे बस्त्र ते जुत्ती भी लियांदी, चमड़े दियां जुत्तियां होंदियां सी, इहनूं पहनाईयां। मिथे समय नाल मैं संखेप करां, जदों सभा वल नूं चले ते उदों गोश्तां होंदियां सी प्यारो, जिवें गुरु नानक साहिब ने सिद्धां नाल गोश्त कीती है, एदा गोश्तां होंदियां सी। लोक बड़ा लाहा लेंदे सी, दो विद्वान आपस विच गलबात करदे सी ते सरोते जिहड़े सुन के बड़े प्रसन्न खुश ज्ञानवान हुंदे सी। ज्ञान दी गल है, मुकरर कीते दिन विच राजा भोज आ के तख्त ते बह गया। आस पास दुनिया बैठ गई, दो तख्त लग गए, एक ते बाहरों आया मेहमान जिन्हें डौंडी पिटवाई वह बह गया, दूजे पासे इन्हां विद्वानां ने थोड़ा समझा सुझू के बथेरा कहिंदा वी मैं पढ़िया लिखिया नहीं, मेरे वास्ते अक्खर जिहड़े ने काली पैस बराबर, मैनूं कुछ नहीं जे आउंदा। कहिंदे गल ही कोई नहीं, तेनूं असीं कहिंदे नहीं, तूं आ नहीं आ कहना, जो तेरी मर्जी है तू कह दे, ते को जो पूछे तू ओदा अपनी समझ मुताबक जवाब दे दी, सानू कोई तेरे नाल गिले गुजारी नहीं है। खैर जेड़ा बाहरों विद्वान आया और राजे दी आग्या ला के कहन लगा जी गोश्त आरंभ होवे। राजा कहिंदा होवे। हुणे विद्वान कहिंदा राजन मैं पिछे बहुत गोश्तां करके आया बोल के, मैं चाहना हुण गुप्त होवे, इशारिया दी विद्या तुहाडे विद्वान नूं किन्नी कौंदी, क्योंकि इस देश ते राज दे विच मैं सुणिया तुहाडी नगरी पढ़िया लिखिया ते विद्वानां दी नगरी है जिन्हां कोल अखरी ज्ञान बहुत है, मैं इसलिए आया। राजे ने अपने विद्वानां नूं कहण लगे ठीक है जी, इशारा कीता ठीक है जिदां ही करना चाहुंदा। भाई गुरदास जी कहिंदे बाहरों आए विद्वान ने ना खड़ी करे एक उंगली, उन्हें एक उंगल खड़ी कीती है, जेड़ा बाहरों विद्वान आया गंगे तेली नूं इशारा कीता भी जो मर्जी जवाब दे दा पर बोली ना। विद्वाना विचों कोई भी गोष्ट सामने जड़ी इशारिया दी विद्या जेड़ा बोलेगा शिकस्त खा जाएगा, हार जाएगा, बोली ना। गांगे ने अगों दो उंगलां खड़ियां कर दित्तियां, खड़ी करे एक उंगली गांगा दोए विखाले रेख है, दो विखाल दित्तियां उन्हें। हुण जिहड़ा बाहरला विद्वान है उहदा ज्ञान देखो, वह हैरान हो गया कि मैं इहनूं पुछिया कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, इन्हें जवाब बड़ा बाकमाल दिता, देर भी नहीं लाई, सोचिया भी नहीं है। उदे रूप दो ने, निर्गुण ते सरगुण, निर्गुण सरगुण रब ते एक है लेकिन निर्गुण भी है सरगुण भी है। फिर दूजा सवाल, कम से कम ये तीन सवाल ने जी, उदों बाद फैसला। दूजा सवाल ए सी खड़ी करे पांच उंगली, ऐदा विद्वान है जड़ा बारों आया, गंगा मुठ हलाए आरेख है, गंगे ने वो मुठ बंद कर दी। असल दे विच हुण जड़ा बारहों विद्वान आया वो अपने ज्ञान का ही इस्तेमाल करता पिया,
ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ। ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਪਵਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਂਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਏ। ਗਾਂਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੁੰਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਗਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗਾਂਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੰਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੋਨੇ ਬਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਠ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕਿ ਜੋਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲਣੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਅਸਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਆ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿੱਥ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਰਾਗ, ਬਿਨੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੋਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਤਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਧਿਆਂ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ
आनंद गुरु गुरु दी हजूरी च बैठे हां, गुरु दी गल बात करदे हां, रब्बी सिफत करदे हां, जिहड़ा लुत्फ आनंद आवे ना जिंदगी विच ओ असल आनंद है, ओ असल मौज आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप दा अर्थ हुंदा जी सोहणेपन नाल संबंध। गुरमुख प्यारियां दी इस खंड विच रसीद सुरत दी जदों हुंदी है ना पहुंच, उन्हां दी बाणी बड़ी मिठी हो जांदी, बहुत मिठा बोलदे ने। यह बड़ा जरूरी है, चलदियां चलदियां गुरु नानक दे मार्ग ते जदों श्रम खंड विच आउंदा है गुरमुख प्यारा ते उहदी बाणी विच की आ जांदा है जी, मिठास, बहुत मिठा, निम्रता, हलीमी, गरीबी। असी गरीबी पैसे नू कहने हैं कि धन नहीं है, बंदा कंगाल है, गरीब है, पर गुरु नानक दे घर दी ते गरीबी गुरु कोलों मंगनी पैंदी है, ते जिहदे उत्ते कृपा करे उहनू गरीबी मिलदी है। गरीबी दा मतलब है निमाणापण, हलीमी। कर कृपा जिसकै हिरदै गरीबी बसावै, कृपा करके जदों गुरु किसी दे हिरदे विच गरीबी टिका देंदा, वसा देंदा, ते जिनू गरीबी गुरु नानक दे घरों मिल जाए, नानक इहां मुकत आगै सुख पावे, ये गरीबी है जी। धन दी गरीबी नहीं है, निमाणापन। तिथे काढ़त घड़िए बहुत अनोख, शर्म खंड विच जाके फिर जेड़ा ना काढ़त घड़ी जांदी है, जिवें टकसालां दे विच बच्चियां दी काढ़त किवें घड़ी जांदी है, उहनां नूं शब्द नाल गुरबाणी नाल गुरबाणी दी संथिया दे के घड़िया जांदा है, संथिया दे के गुरबाणी। साडी कौम दे विच मैं कहांगा कि असी तंता योगा के संस्था कह लो, टकसाल कह लो, दमदमी टकसाल, जदों दी ए प्रसिद्ध हुई टकसाल प्यारे हो, इन्हां ने अपने ते दायरे विच आउण वाले बच्चियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी संथिया दित्ती, पर हर चाहवानों देशां विदेशां विच वी इन्हां दा अज यतन सफल होया। जिन्ना चिरे संथिया असी लैंदे नहीं, गुरबाणी दा शुद्ध उचारण नहीं होंदा। गुरबाणी नाल इस टकसाल ने, दमदमी टकसाल ने बहुत बच्चियां नूं, सिखां नूं, कौम नूं जोड़िया, कि कौम दे उत्ते एक बहुत वड्डा एहसान ते भावे असी ना कहीए, देन बहुत वड्डी है दमदमी टकसाल दी। पर इत्थे घड़िया की जांदा है गुरु नानक दे घर विच, तिथे काढ़त घड़िए, काढ़त भी बड़ी अनूप बड़ी सुंदर है, उपमा तो रहत बहुत ही सुंदर। गुरु के प्यारे हो, ओ काढ़त दियां तांकियां गल्लां कथियां ना जाए, इन्नी मिठी बोली, इन्ना मिठा शील सुभाव बन जांदा इस खंड विच पहुंचन वाले दा प्यारियो, ओदियां गल्लां दे विचार ते कथन नहीं कीता जा सकता। उहनां दी विचार कह लो गुरु वर्गे ही हो जांदे ने। एक वाक है, सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है। फिर आवाज दिंदे गुरु साहिब, आओ गुरबाणी बनी है, गुरबाणी वर्गे गुरु वर्गे हो जांदे, ते उहनां दीआं मिठियां सोहणियां जुबान दीआं गल्लां नूं कौन हुण कथे, कौन बयान करे, कथन तों बाहर आई है इन्नी मिठास, इन्नी सुंदरता, इन्नी निम्रता, हलीमी उहनां दे जीवन विच आ जांदी। ते जे को कहे, जे को कहण दा यतन करे, पिछों पछुताएगा कि मैं ये मुकम्मल नहीं कह सकिया। घड़िया की जांदा है गुरु नानक दी टकसाल विच, तिथे घड़ीए सुरत, सुरती नूं घड़िया जांदा है।
मत नू कड़िया जांदा है, मन नू कड़िया जांदा है, ते मनुख दी बुद्धि नू कड़िया जांदा है। एवें कोई मुकम्मल गुरु दा मुरीद नहीं बन सकता प्यारी। ये शर्म खंड दियां बरकतां ने। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। वड्डे वड्डे देवतियां दी वी जिहड़ी उत्थे घाड़त हुंदी, गुरु नानक दी सोबत विच, गुरु दी संगत विच, सरम खंड विच पहुंच इत्थे भी आम मनुख पहुंच के देवतियां समान हो जांदे ने। गुरु नानक दे घर दी सोबत ए हो जी है गुरु के प्यारियो, केवल जुबान दी मिठास ही नहीं, जीवन विच निम्रता हलीमी गरीबी आ जांदी है। गुरु दे शब्द इक सौटी ते ला के मनुख सतसंगी दी सुरत मत मन ते बुद्धि नूं घड़ दिता जांदा है। इस खंड विच जदों सुरत पहुंचदी, पर याद रखना जेड़ी सुरत मोह दे चिक्कड़ विच फसी है ना, ओ मनुख भावें रोज गुरु को लाउंदा है, अजे तक उन्हें गुरु वल एक कदम भी नहीं पटिया। ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ। ਮਤੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦਾ, ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚਾਰ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤ ਇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਤ ਲਈ, ਦਾਤਾ ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧਰਦਾ ਤੇ ਮਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਮੀ ਕੋ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਲਤਾ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਿਆਣ ਸਵਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ।
ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਉਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਮਨ ਸਾਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ, ਪੰਚ ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧੀ, ਉਹੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਬੂਲਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਸੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾਂ ਸਮਾਨ ਸੁਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ

जन्म दे के। 86 दे विच संखेप जी मैं बेनती करनी है, क्योंकि याद करना कौम दे शहीदां नूं बहुत जरूरी है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पूरा मेरा यतन होएगा कि ना दोनों ही सूरबीर योद्धियां नहीं कौम दे सारे शहीदां दी जिहड़ी है ना मैं चरण बोसी करदियां एतवार दे दीवान विच खुल के विचारां संगतां विच करन दा यतन करांगा कि गुरमत अनुसार शहीद दी परिभाषा की है ते शहीदां नूं क्यों असी नमन हुंदे आं उहदा कारण की है। आदि विद्वान लिखदा होना बहुत जरूरी है नमन सिर चुके साडा, क्योंकि उन्होंने साडे लई शहादत जाम पीता। उन्हां दा अपना निजी जिंदगी दा कोई स्वार्थ नहीं सी। 86 च गिरफ्तार होके ठीक 6 साल बाद 9 अक्तूबर 1992 विच इन्हां दोनों सूरबीर योद्धियां नूं फांसी दी सजा हुई सी, फांसी। लेकिन इन्हां दोनों ने फांसी दे रस्सियां नूं चुम्मिया, आप हत्थी मठियाईयां वंडियां, लोक ए सुन सुन के ते देख देख के हैरान हुंदे सी कि अज तक सुनिया ही सी कि सिखां नूं मरण दा बहुत चाह है। ए ते पहला सबक है गुरु के प्यारे सानू गुरु दा। ते गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज बचन करदे सिख नूं समझाउंदे सिखा जे मेरे नाल तों प्रेम दी खेड खेडनी, खेड खेडन दा मतलब है मेरे नाल प्यार पाउणा ही, ते सब तो पहला मेरी एक गल मन पहला मरन कबूल। जे मुरीद बनना तू मेरा ते की कर पहला मरना कबूल कर। सारी दुनिया दी जिंदगी ते जीवन जन्म तो शुरू हुंदे ने, पर जदों ये प्यारे बचन गुरु नानक साहिब दे पढ़िए प्रतीत हुंदे प्यारे हो के सिख दा जीवन मरण तो शुरू हुंदा है। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मेरे को आजा तेरा होना कबूल ताए मेरे नाल तो प्रेम पा सकदा है, प्रेम दी खेड खेड सकदा है, पहला मरना कबूल कर। ये दोनों सूरबीर योद्धिया ने 9 अक्तूबर अज दे दिन 1992 नूं पुणे दी मेरे ख्याल ए जेल सी जिथे इन्हां नूं फांसी लाया गया। ते जदों भाई हरजिंदर सिंह जिंदा दी लाश घर पहुंची ना उदों माता जन्म देण वाली किन्नी साहस वाली है, चादर उठाई जड़ी उपर सी चिट्टी सफेद जिनू असी कफन भी आखदे आ, वह उठा के जदों चेहरा देखिया ना आम मावां ते चीख चिहाड़ा पा दिंदियां रोंदियां कुरलाउंदियां ने, पर धन है वह मां जिसने जज्बे विच आके एक नहीं कई जकारे छड़े। गुरु के प्यारे आओ

ऐसे सूरवीर योद्धे जो कहनी ते कथनी दे मालक बन गए। शीस देन दी लोड़ आई फिर कहंदे ने महाराज नूं परवान हो गए, सुनहरी इट बन के महाराज दे घर विच लग गए। भाई सुखदेव सिंह जी सुखा हरजिंदर सिंह जी दा सदा वास्ते जी गए, उन्हां दियां बदौलत उन्हां दियां कीतियां कमाइयां दा हिस्सा असी अडा रहे हां, असी खा रहे हां। सतगुरु कहंदे ने ऐसे सूरवीर महाराज किसी किसी नूं नहीं वासदा है, किसी दी कोई सेवा किसी दी कोई सेवा। वो गुरु नानक दे घर विच सुनहरी इट बन के लग गए ने ते दुनिया दे हर कोने विच पंथ दे दिलां विच जिउंदे। किसी ने सवाल किया भी बंदा कई वारी शरीर करके ढिला हुंदा है, किसी फकीर ने सवाल किया भी मर के भी जिया जा सकता है, फकीर नू पूछिया भी मर के भी जिया जा सकता है, वो कहता हां, कहते किवें पंथ दे दिलां विच संगतां दे दिलां विच ए थां किसी कर्मा वाले नू नसीब हुंदी है। आओ लवाइए हाजरी और उन्हां शहीदां नू सुखदेव सिंह जी सुखा हरजिंदर सिंह जिंदा उन्हां दियां आसीसां लईए।

भाई साहब, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा और भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी कहनी कथनी दे बचना नू कमा गए और सिख पंथ दी होर भी जय जयकार का हिस्सा बन गए, सिखी दी शान बन गए, सिख पंथ दे दिलां विच हमेशा अपनी थां बना गए। वो अज भी साढ़े दिलों में मौजूद ने, ऐसिया रूहां निरंकार के घरों अकाल पुरख की दरगाह तो ही बख्शिशा लैके आउंदियां ने और अटल जीवन विच कमाई करके साढ़े जीवन नू खुशहाल निहालो निहाल बना जांदियां हन। जो ऐसिया रूहां याद आउंदियां ने फिर उत्थे भाई मती दास जी वर्गे, भाई सतीदास जी वर्गे, भाई दयाला जी वर्गे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वर्गे, कई तरह का जिंदगी विच हेर फेर आया पर जो पूर्ण गुरु मिलिया फिर ऐसे रब दे बंदे बन गए। जादू टूने कई तरह के रंग जिंदगी विच, किते माधुदास किते कुछ, पर जदों दसवें नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिले इन्हों का कोई भी जादू ना चलिया, फिर चरणा ते टह महाराज कहन लगे अकाल पुरख का बंदा बन, फिर हाथ जोड़ के कहंदे ने बना दिओ, फिर ऐसा थापड़ा दिता सरहन दियां इट नाल इट खड़का दिती। साहबजादियां दा बदला लैण वाले भी बाबा बंदा सिंह बहादुर बन गए। सो ऐसियां महान महान रूहां जिन्हां ने मीर मनू दी जेल विच शहीदियां पाई, बच्चियां दे टोटे करके गले विच हार पवा ले, उन्हां दीयां बदौलतां ही असीं जिंदगी दे सुख मान रहे हां। और पाणे नूं मिठा करके मन्निया, सारा दिन भावें टोटे करके गले विच हार पवा ले पर शामां नूं रहरास करके इह शुकराना कीता, ऐ कलगियां वाले पातशाह तेरी सिखी सिदक निभ जाए ऐसा हौसला तू आपे बनाई रखी। ये बख्शिश छोटी नहीं, ये बहुत महान बख्शिश है। मेरे वर्गे तो केवल पदार्थां लई चंद पैसियां लई रुल जांदे ने विक जांदे ने, असल मनोरथ तो टुट जांदे ने। सतगुरु मेहर करे सानू सिक्खी नाल और उन्हां शहीदां नाल बन आए जो पंथ दी आन बान शान ने जी। सब दी हाजरी दर प्रवान सबनू जी आया नू, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर।

काम क्रोध नगर वोह परिया मिल साधु खंडल खंडा ही और अब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लियो मंडल मंडा हे कर साधु अंजुलि पुनवडाए कर चंडोत पुनवडाए रहो साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हो मैं खंडा हे जो जो चले चुप है दुपाव जमकार सह से खंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दुख जनम मरण पौखंडाए अविनाशी प्रपाय परमेश्वर बो सब खुण ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्किर प्रभ तेरे हर राख राख लुडाहे जनार नाम दा टेक नामे सपंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता

सवारे रहो। यो संसार विकार संसे मैं तारियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे एहो रस पाकत कथा तिन जानी जा को आए सोए बिहाजो हर गुरते मनहै मसेरा निज कर महल पाओ सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 767 ਔਰ 768 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸਦਾ ਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਪਰਉ ਪੁਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ।
प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज सम्मानी, प्रभु कै सिमरन निःचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंत जाते। हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर किरपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनक पुन है चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जप हो मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध न परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनेक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पर राही। अनेक बिघन जय आये सुंगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेक जोन जन मैं मार जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाए न कूसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिह पैंडाए महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सुइयानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महापयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ अकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जान कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखुद साधक मात। हर जन कै हरि नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन कै बिरत बबेक है। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इहो हर को नाम काम, तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्ख सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक
बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब तिहान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कार राती वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिर चेर जीव महा उदास तपीसर थीव अग्न माहे होमत प्राण कनक अशव हैवर भूम दान। नेवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन। नेमखो निमुख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। मन कामना तीरथ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत स्याण पजम का भौ व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै। शूट सनाही ऊब पयाल मुहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। जे को आपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी सो बालोरै साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै। जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बाल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन आपुने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौ धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा कौ देवाव दान। करन करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गात मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम किरिया साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह घट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निभि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने कवन मूल ते कवन दृष्टाने। जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार बिवस्था तुझै प्यारै दूध भर जोवन भोजन सुख सूध। बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अपयाओ बैठ कौ दैन। एहु निर्गुण गुण कशु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सी जहे। जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जिह प्रसाद पीवह सीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दुख मूड अंद ब्यापे नानक काढ लेहो प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार। जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारै मुगद अजान। सदा सदा एहो भूलन हार नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै।
जो षडना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर परन, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए कर तब प्रीत, भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ लिहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर पेख अंतर मल माया, शपश नाहे काश करै छपाया। बाहर ज्ञान तिहन इस नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अग्न बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे करै अथा। जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहु ऊड़ निभावै। कहा बुझारत बुझे डोरा, निस कहिए तो समझे पूरा, कहा बिशन पद गावे गूंग, जतन करे तौ पी सूर पंग। कह पिंगल पर्वत पार पवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाय सुआवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद खेल माया रंग रसै। दृढ़ कर मने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रो। याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कह, लाग है आन सो आए, नानक कहू नसी जाई, बिन नावै पात जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे, एक पी न दे दस पी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कह करे। जिस ठाकर स्यों नाही चारा, ताको कीजा साध नम सुकारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहु मन बूठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगनत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान काश बाहुर साहुले, अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरुस का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिस आगै रखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै, उसे चौ गुण करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावै, उहो बिनसै उ मन पछुतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे उतह आनंदार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ न आवै के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तान तान कुटंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रु मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार को तहवै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरती साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन किन रारथ दाम। तन तन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत आवर काश अवर कुमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गांड लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख ना काहू पीन।
आवर उपदेशय आप न करय, आवत जावत जन्मय मरय, जिसकै अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरय संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आपे आप करत न बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब काश जानै आत्म की रहत। जिस पावै तिस लाए, लड़ लाए खान थनंतर रहया सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहं मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को राख मन माहे, जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै। जिह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर, जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जिह प्रसाद पाठ पटंबर हटाव है, तिस है त्याग कत अवर लुभाव है। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय, जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखान। जिह प्रसाद तिरु रहता धर्म मन, सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावे, नानक पाक से ती घर जावह। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही, लिवलाव तिस राम स्नेही, जिह प्रसाद तिरा उला रहत मन, सुख पावे हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, जिह प्रसाद तुझ को न पहुँचे, मन सा सा सिमरहु प्रभ ऊचे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे हे, जिह प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी, जिह प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभ अपुने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई, तिसै त्याए जो एक अलख है, इहां ऊहां नानक तेरी रखै। जिह प्रसाद करहै पुन बवदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप, जिह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पातर है, गुरु प्रसाद नानक जस का है। जिह प्रसाद सुनहै करण नाद, जिह प्रसाद पेख है बिस्माद, जिह प्रसाद बोले है अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गत पाव है, जिह प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो। जिह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनहो विसार, जिह प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जिह प्रसाद तू पावह साच, रे मन मेरे तू तासिउं राच। जिह प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्ब निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावहु तित लगहै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटे सु ज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा,
साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनु हर बैन, साध कै संग न कत हूं तावै, साध संग अस थे तो मन पावै, साध कै संग माया ते भिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसे थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे, साधु कै संग सो धन पहवै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सुबा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं काश काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग, साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यान है, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन आपो न है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बनी नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, पुरत हरे जो अंतर नाम, सर्व में पिक है भगवान, निमख निमख ठाकुर नाम सुकार, नानक ओह अपरस सगल ने सुतार, अष्टपति मिथ्या नाही रस न परस, मन मह प्रीत निरंजन दरस, परत्रय रूप न पिक है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते तरह, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वह नहे कर्म, तिस बैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ बैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नेतनीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असथूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर का उतारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं ब्योग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु बिद अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहरै, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्या वह है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्ब को ही रह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि अर सूर नखियत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै,
कई कोट राज सुतामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शाश्वत, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरै सब ते सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह भाणा तह तह राखी, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगै सात संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तात के बेते सदा निहार एकु नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवह अमर पय साध साध ही जीवह, कई कोट नाम गुण गावह आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सा सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक ते सबल हारण है, जल थल महियल सोए अष्टपदी, कारण करावन करणै जोग, जो ते सुभावै सोई होग, खिन मह थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजाय हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपने वडयाई, नानक सब मै रहा समाई, प्रभ पावै मनुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास तिराखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पतत उदारै, आप करै आपन बीचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होया वै, ज्यो तिस भावै सोई करावै, इसकै हाथ होए तां सब किछ ले, ज्यो तिस भावै सोई करे, अन जानत बिख्या मै रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दै दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिसे अपने भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जा कौ अपनी करै बखसीस, ताका लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावण सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, ज्यो तिस भावै सोई फुन थियो, कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर करंग हसै,

अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए किता ना हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया सुमाई गोरेश्वर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सपावा विण पाने के नाए करी जेती सिर ठोपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे कुगुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी हुए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ते हा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाल सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहि न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जुग तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै सटका इसनान सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास।

मन्ने की गत कही न जाए, जिको कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुझ छुट्टा न काए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पक्ष प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार, मन्ने तरै तारे गुरु सिख, मन्ने नानक पवै न पिकु, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जिकु कह करे विचार, करते कह करने नाहीं सुमार, तौल धर्म दया का पू, संतोख था प्रख्या जिनसु, जिकु बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर के तापार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कला, मेहो लेखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता हुए, किता तान सुवालियो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता फसाओ एको कुवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुझ पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मूह लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहि जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक काहि, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी शाला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाणु, अखरा सिर संजोग बखाणु, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीति कपड़ हुए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहि, कर कर करना लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही खाहु, नानक हुक्मी आव जाहु, तीरथ तप दया दत दानु, जिकु पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाऊ, अंतरगत तीर्थ मल नाऊ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति माहु कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाया पंडती, जे हुवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादी आजे, लिखण देख कुरान, थित वार ना जोगी जाने, रुत माहु ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई,

कर पाहे। केते मूरख काही काहे, कित्या दुख भूख सद मार। ए पैदा तेरी दातार, बंद कलासी भाणे होए। हो राख न सकै कोए, जी को खाए के आखन पाए। ओ जाने जितिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे। आखै से पेके के, जिसनु बख्शे शिव सलाह। नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण मुल व्यापार। अमूल व्यापारी अमूल भंडार, अमूल आवह।

नरसिंह है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अभा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयाचंद,

नंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे।

राजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अभे हैं प्रभु हैं अजू हैं अधेश हैं अभेश हैं भुजंग प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्पुंग निर्नाथे नमस्पुंग परमाथे।

जा जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चत्र चकमानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जाप आदिवनाद मूरत ताप्यो सबै जेथा परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख अभे संग राग नरंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन भंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनभेद सर्व

अंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतिदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन।

शरीर में कि सर्वं कली है, कि सर्वं दली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौण है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिश है, कि सर्वत्र राज्य है, कि सर्वत्र साज्य है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहु, कि सर्वत्र पाहु, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काजय, कि सर्वत्र राजय, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र भूख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, कि सर्वत्र जाप्य है, कि सर्वत्र थाप्य है, कि सर्वत्र पान्य है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र इंद्र है।

त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवाद्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप छिज हैं अछूत हैं कि नरकंग प्रणाश हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुगत प्रभा हैं।

हर पर अगंजु, हर नर पर पांजु, अनगन पर नाम उन्मन सला, हर नर अखंड, पर नर अमंडु, अन पवनास मुनमन प्रकाश, गुनगन पर नाम जल तल मुदाम, अनचित अंग असुन अपांग, उपमा पार गत मित उदार, जल तल अमंड, दिश विज अपांड,

पार आडीठ धर्म वत ढीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत्य अमृता अमृत अमृता अमृत करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तृत्य अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृता अमृत जबा कृत्य अमृता अमृत निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पवपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सुरभा कृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भस है जस की जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्य

नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारणा सब ना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही धर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तीरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया है वड्याइया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच सब तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया।

तन पाइये नानका से तन हुवे चार। ज्ञान नगली टूडिये कतना करड़ा सार, क्रम मिले ता पाइये और हिकमत हुकम कुआर। बोड़ी नत कहे जी अपनी।

वाइन चिलिन चन गुर पैर लाइन फिर सिर उड उड रावा चाटे पाए वे खै लो खसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवक क्रम चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी क्रम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक तलवार रोले बहुत अनंत लाटू माधानियान गा पंखी पौंदियां लैन ना सहा सुवे चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पे कृत नचै सब कोए

सच्चो सत्य आया। उन्नी मंदे पैरना रखी होकर सुकृत धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी।

वेद द्रवण हुआ ना खुदा ये लो है नील वस्त्रले कपड़े पहरे तो पुठानी अमल किया चार ही वेद सत्यारू पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भगत करनी सदा तो नानक।

68 तीर्थ जी नावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़, ते पल्ले संसार तिन निहु लगा।

राग सुही शंत महला तीजा कर दूजा एकोंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहेलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम ते आवो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गोरे अपने विटों जिन कारज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जपो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सहज सुभाई

कोई जीव संसार सागर नो नहीं तर सकता। इको एक तरीका सलीका गुरु नानक दे घरों प्राप्त हुंदा है। बाबा कबीर जी ते डंके दी चोट ते इंसानियत नू कह रहे ने मनुख नू, हर के नाम बिन किन गत पाई। परमेश्वर दे नाम तो बिना दसो भाई किसे नू मुक्ति अज तक मिली है? कर्म कांडा नल मुक्ति नहीं मिलती, पार उतारा नहीं हुंदा, दान कीतियां भी नहीं हुंदा, पुन कीतियां भी नहीं हुंदा। फिर की करिए? गुरबाणी यही कह रही है, कवि जी दस दे, हर के नाम बिन किन। कौन ऐसा बंदा एक मिसाल दसो जेड़ा कर्म कांड करके तर गया होवे? कोई भी एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा। अज धन गुरु अमरदास सचे पातशाह भी बचन कर दे, जगत विच परमेश्वर दे नाम नाल ही हरेक जीव दा पार उतारा हुंदा है, ते गुर ते उपजै शब्द विचार। गुरु दी संगत करन दा एक लाभ गुरु अमरदास महाराज बचन कर दे बहुत प्रमुख मिलता है। आत्मक जीवन नवा जीवन जीवन दा सलीका ढंग गुरु कोलो जदों मिल जाए ना, फिर ही कोई गुरमुख प्यारा गुरु दे शब्द नूं विचारदा। गुरु दे शब्द नूं उदों विचारदा जदों उस दे अंदर गुरु राही नवा आत्मक जीवन जीवन दा फलसफा टिक जाए, गुरु कोलों मिल जाए। फिर वो शब्द दी विचार करदा ते गुरु शब्द विचारा, जिवें जिवें गुरु शब्द नूं विचारदा है राम नाम प्यारा, उनूं परमेश्वर दा नाम बहुत प्यारा लगन लग पैंदा है, ते जिस कृपा करे सो पाए। धन गुरु अमरदास महाराज कृपा कर दे भाई, केवल गल्ली बाती ए दात प्राप्त नहीं हुंदी, जिदे उत्ते मेरा करता पुरख किरपा करदा ना, ओदे ते ओदी मेर ते किरपा हुंदी, ओनू ए दात मिलदी। ओ गुरु शब्द नू जिवें जिवें विचारदा परमात्मा दी प्रेमा भक्ति नाल ओदा मन पतीजदा मनदा, लगदा राम नाम प्यारा, उनू प्रभु दा परमेश्वर दा नाम प्यारा लगन लग पैंदा। ए दात उनू प्राप्त होंदी जिहदे उत्ते ओ मालक कृपा करदा। सहजे गुण गावे दिन रतिं किल विख सब गवाए, सहज विच टिके आत्मक अडोलता विच टिके, ओ फिर परमात्मा दे गुण गांदा रहिंदा भावें दिन होवे भावें रात होवे। अज लोग इत्थे ही टिके हुए ने कि रब दा सिमरन कदों करना है, किन्ना करना है, किवें करना है। गुरबाणी ने इना सरल सलीका ढंग तरीका मनुख नूं इंसानियत नूं दस्या, इहने समझण दा यतन नहीं कीता। देखो किन्ना सरल है, ये सारे सवाल खत्म हो जांदे ने। साईं जवाब देंदे, उठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, पावे राते तुरे जा रहे हो तामी जाप लो, सौ के उठे हो तां भी, जे बैठे हो तां भी, पाव बैठ के भी उठ के भी चल दिया भी, उस मालक नूं चेते कीता जा सकता है, उनू सिमरिया

ना कछ पूछ माटी के भांडे ना कछ पूछ कुंभार सब मैं सच्चा एक सोई तिसका किया सब किछ सब।

लंपट कृष्ण अपाख जिने आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अभिनिया कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर पाठ न पावै।

दोय धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब भोकट निश्चय कर्मं कहु नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै निःपलंग तस जन्मस्य जा

दुर्लभ देह उदरंत, साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत। सुबंत तोयं

नच दुर्लभं चतुर चंचल है। दुर्लभं एक भगवान नाम है, नानक लब्धं साध।

उपदेशं सम मित्र सत्रह भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पू

अपराधं किल विकमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापितं मृत्यु जन्म परमंत नरक है अनेक उपावं।

दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत।

पारा हारा चाक मन निर्मल हो अकल वे कटन हारा। शब्द मरो फिर जीव सद हिता फिर मर न होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई। दात दात रखी हाते अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे सुट महला तीजा। सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजय गात्मा तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाय। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखंदा सब न जाना झूठा परम पुलाना रहा। त्रै गुण माया परम पुलाया हूं मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर उपर उबो गर्भ जोन दुख पाए। त्रै गुण वरता सगल संसारा हूं मैं विच पद खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई नानक राम नाम निस्तारा सबद हूं मैं खोई। सोठ महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप पाहो वंजा राजा गाप है प्यारा आपे सचा साहो आपे वंजवा पारिया प्यारा आपे सच विसाहो। जाप मान हर हर नाम सला गुर कृपा ते पाया प्यारा अमृत अगम थार हाओ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाहो आपे उजड़ पायदा प्यारा आप विखाले राहो आपे आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो। आपे आप पायदा प्यारा सिर आपे चंदड़ा लाहो आप कराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पतन पातनी प्यारा आपे पार लंघाओ। आपे सागर बोहता प्यारा खुर गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेख पास साहो। आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोठ महला चौथा। आपे इंड सेत जेर सेत ज उत पोज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बोमणिया कर सकती जगत परोए। आपे ही सूत धार है प्यारा सूत खिंचै टह टेरी होए मेरे मन में हर बिनेवर न कोए। सतगुर विच नाम निदान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ। आपे जल थल आपे जल थल सबत है प्यारा आपे करे सुहोए। आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सुहोए। आपे लख न लखिए प्यारा आप लिखा वै सोए। आपे गैर गंभीर है प्यारा तिस जे वड़ेवर न कोए सब घट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुप्त वरतदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोठ महला चौथा। आपे ही सब आप है प्यारा आपे थाप थाप आपे वेख वगसदा प्यारा कर चोज वेख प्रभ आप आपे वणतन सब था प्यारा आपे गुरमुख जाप। जाप मन हर हर नाम रस त्रप अमृत नाम महारस मीठा गुर सब दी चख जाप रहाओ। आपे तीर्थ तुल हड़ा प्यारा आप तरह प्रभ आप आपे जाल बतायदा प्यारा सब जग मछली हर आप। आप भुल न भुले प्यारा अवर न दूजा जाप आपे सिंगी नाद है प्यारा तुने आप बजाए आपे आपे आपे जोगी पुरख प्यारा आपे ही तप तप आपे सतगुर आप चेला उपदेश करे प्रभ आप। आपे नौ जपाए दा प्यारा आपे ही जप जप आपे अमृत आप प्यारा आपे ही रस आप। आपे आप सलाह दा प्यारा जन नानक हर रस त्रप सोठ महला चौथा। आपे कंडाए आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे सौ आपे वंजारा आपे वंज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पीछे टंक चढ़ाया। मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुर पूरा मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वरदा प्यारा जल माटी बंदर खाया आपे ही पौ पाए दा प्यारा बन बकरी सी हंडाया।
आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप भरता प्यारा पै अग्न न सकै जलाया आपे मार जी वायदा प्यारा सा लैंदे सब लुआया आपे तान दी बाण है प्यारा आपे कार लाया ज्यों आप चलाए तो चलिया प्यारे ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जनती जनत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सोठ महला चौथा आपे श्रेष्ठ उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चा नान आप नितान्या तान है प्यारा।

सत्संगत मिल जाए तू हर हर बोल नयावन जान रहा। आपे ही गुणवत्ता प्यारा, आपे ही प्रमाण, आपे बख्श कराए दा प्यारा।

आपे सेव कराए दा प्यारा आप दिवा वै मान आपे ताड़ी लाए दा प्यारा आपे गुणी निदान आपे वड्डा आपे प्यारा आपे ही प्रधान आपे कीमत पाए दा प्यारा आपे तुल परवान आपे तुल सुलाए दा प्यारा जन्ना नानक सद कुरबान सोलठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत महाय आपे गुण गवाए दा प्यारा आपे शब्द सुमहाय आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखा मेरे मन जप राम नाम यो महाय अन दिन आनंद हो वै बड़ भागी लाए गुर पूरा हर लहर हाउ आपे गोपी गां कान है प्यारा बन आपे गौ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश बजाहा कुवलिया पीड़ आप मराए दा प्यारा कर बाल रूप चाहा आप खाड़ा पाए दा प्यारा कर वेखे आप चुजाहा कर बालक रूप पाए दा प्यारा चंडूर कंस के समारा आपे ही बला पे प्यारा बल भन्ने मूर्ख मुगदाहा सब आपे जगत पाए दा प्यारा वस आपे जुगत हथा गल जेवड़ी आपे पाए दा प्यारा जो प्रभ खिंचै त्यों जाहा जो गरबै सो पचसी प्यारे जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दुतके अनेक जन्म विछड़े दुख पाया मन मु कर्म कराय अहंकारी साधु परसुति प्रपाया गोविंद शरण तुम्हारी गोविंद प्रीत लगी अति प्यारी जब सत्संग पै साधु जन हृदय मिलिया संत मुरारी रहाउ तू हृदय गुप्त वसै दिन राती तेरा पाओ न बुझै गुवारी गुरु सतगुर पुरख मिलिया प्र प्रगटिया गुण गावै गुण विचारी गुरमुख प्रगाश पाया सांत आई दुर दुर मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा पई तुम्हारी नानक तुल सहज कृपा कर सहज सुख पाया आंदन जागत रहे बनवारी सोठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन बेदिया हर बिन रह न जाई जो मछली बिन नीरा बिन सह त्यों नाम मैं बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही सांत पाई रहाओ जो चातरक जल जल बिन बिलावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजै हरिया पाए सुपाई मन में भूखे दै दस डोलै बिन नावै दुख पाई जन्म मरै फिर जो नी आवै दरगह मिलै सजाई कृपा करै ता हर गुण गावै हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल पय है तृष्णा शब्द बुझाई सोठ महला चौथा पंच पदा अचर चराय ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन पीतर ता भ्रम काटिया जाई मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई गुरमत राम नाम प्रगासो सदा रहो सरनाई रहाओ इह संसार सव्यावन जाना मन मूर्ख चेते अजाना हर जो कृपा करो गुर मिलो हर हर ता हर नाम समाना जिसकी वस सोई प्रभ जाने जिसनु देस पाए वसनु पता आता गम गोचर गुर पूरा लख लखाए जिने चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई रतन लुकाया लुके नाही जे को रखे लुकाई साब के तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनु दात करे सो पाए जन नानक और न कोई सोठ महला पंजवा घर पहला तितुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हो जाची किस आराधी जा सबको कीता होसी जो जो दिस वडा वडेरा सो सोखा कूरल सी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नाव निद देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब की तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदा तन खोट न कबहि जाई अनद भया सह सुख सह समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम राद अंद नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी
जिनको कृपाल प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जियां दयाला सब की किता तेरा वरतै हम क्या बाल गोपाला राख लियो नानक जन तुमरा जो पिता पूत कृपाला सोठ महला पंजवा घर पहला चौथुके गुर गोविंद सलाहिय भाई मन तन हिरदय धार साचा साहिब मन वसै भाई हा करनी सार जित तन नाम ना उपजै भाई से तन होए शार साध संगत को भारिया भाई जन एक अंकार आधार सोई सच राधना भाई जिस ते सब कुछ होए गुर पूरै जान आया भाई तिस बिन वरना कोई रहाव नाम हुणे पच मोए भाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाईए भाई साचा गम धणी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावे एक कणी सिमरत सास सोध्या भाई बिन सतगुर परम न जाए अनेक कर्म कर थाक्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधिया भाई बिन सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया भाई हर हर नाम त्याए सच सदा है निर्मला भाई निर्मल सच सोए नदर करे जिस अपनी भाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाई भाई विरला कोई कोए नानक रता सच ना भाई सुन मन तन निर्मल होए सोठ महला पंजवा दुतुके जौ लो पाओ पाओ हे मन तौ लो मिलन दुराई आन अपना करत बिचारा तौ लो बीच बिखाई माधवे ऐसी देहो बुझाई सेवा साध गहो उठ चरना न बिसरै मोहत चसाई रहाव रे मन मुगदा चेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पा त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापै आपन थापै साध संगत बुद्ध पाई साकत का बकनाई हो जानो जैसे पवन चुलाई कोट पराध अच्छा दियोए मन कहना कछु न जाई जिन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक गृह बनता माया सन बंधे ही अंत की बार को खरा न हो सी सब मिथ्या स्नेही रे नरकाया हे पुपोरो देही उड़ जाएगो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संज्ञा कर दे कीनी जल कुकर पसमे ही होए अमरो गृह में बैठा करण कारण मिसरोही अनेक पात कर्मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गोसूत बापरे फिर पाछे कुछ तोही जिन तुम सिर जे सिर जसवारे तिस त्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सात गोरे ओटर गहे सोठ महला पंजवा गोरपी पूरा पेट्यो वडभागी मनै भया परगासा कोई न पोचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगै सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारा रहा अंतर जामी करना हारा कोई सोई खसम हमारा निरपौ भय गुरचरनी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होन हारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपने प्रीत प्यारा वड़ी वडाई अचरज शोभा कार्ज आया रासे नानक को गुर पूरा पेटियो सगले दुख बिनासे सोठ महला पंजवा सुखिये कौ पेख है सब सुखिया रोगी कै पाण है सब रोगी करण करावन हार स्वामी अपन हाथ संयोगी मन मेरे जिन अपना परम गवाता तिसका भाणा कोई ना भूला जिन सगलो ब्रह्म पिछाता रहाओ संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी हो मैं रोग जाका मन व्याप्त ओह जन्म रह बिलती ज्ञान इंजन जाकी नेत्री पढ़िया ताको सर प्रगासा अज्ञान अंधेर सू जिस नाही बौड़ बौड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक ए सुख मांगे जय कीर्तन तेरा साधु गावे तहे मेरा मन लागे सोठ महला पंजवा
तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ध्याया सर्व कुशल तब थिया संतन बिन अवर न दाता दिया जो जो शरण पर साधु की सो पार ग्रामी किया रहा कोट प्राद मिटा जन सेवा हर कीर्तन जस गाय इहां सुख आगे मुख उजल जन का संग बड़ भागी पाई है रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केत उपमा कही है अगम अंगो चिर सुदा मनासी शरण संतन की लही है निर्गुणी जनाथ अपराधी ओठ संतन की आही बूढ़त मोह गृह अंधकूप में नानक लेहो निबाही।

पाई, सोई ज्ञानी सोई ज्ञानी सोई पुरुष सुपाई, कौनान जस पै दयालाता को मानते बिसर न जाई। सोठ महला पंजवा सगल समग्री मोह व्यापी, काबू चे कब नीचे, सुध न हो ये काहू जितना ओढ़क को न पहुँचे। मेरे मन साध सरण छुटकारा, गुर बिन पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओह जो परम पुलावा कहिया, तिन मैं उतरियो सगल बि संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदक नाही काहू बाता है खसम का किया, जाको कृपा करी प्रा मेरे मिल साध संगत नाउ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सरना करते उधारा, कौ नानक गुर बिन चरिया पूर्ण सत विचारा। सोठ महला पंजवां

ब्राह्मणो देहो उपदेशा मान की जय शरण प्री जय करै सुभला मनाइय सुन मीता जियो पिंड सुन मीता जियो पिंड सब तने अर्पी जय इं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रह प्रसाद संतन का हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा धारी सब कुल निरंजन डीठा सोठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाल अनुसार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर राध न जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम पर्यो रामदास रहाव दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा पर पूरी रे पेग सुन सदा है संग मैं मूर्ख जाने अंदूरी रे हर बेनत हो मित कर वरनो क्या जाना हो कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपनाए मैं मूर्ख दे हो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी थरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परियारे सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत दे स्रोते मिटे सब गया सहज सहन अर सुख मन नारी उद कमल बिकसया देखो अचरज पया जे ठाकुर को सुनत अगाध बो

जो दूत मैं बहुत संतावत ते भयानक भया कर बेनती राग ठाकुर ते हम तेरी सरनया। जय पंडार गोविंद का खुलिया जय प्राप्त लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दिनो चा डाले अमर न मुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपै फिर लेखा मूल न लया। सोठ महला पंजवा चरण कमल सेव जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जसरी दमस्या ते नृसन त्रिखाई हरे आराधे रोगन दाई जिसनो मिसर मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जने आई रहा। जे जाने उठ गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया प्रुख विधाता ते दुखिया मैं गरने जे गुरमान प्रभु ले लाई ते महानंद रस करिया जे प्रभु विसार गुर से बेमुखाई ते नर घोर मैं परिया जित को लाया तित ही लागा तै सोई वरतारा। नानक सह फकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोठ महला पंजवा राजन को राजा उर जायो मानन मैं अभिमानी लोभन मैं लोभी लोभायो त्यों हर संग रचे ज्ञानी। हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ। अमलन से अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कहलीना प्रभ संत से हितकारी। विद्या मह विद्यन सी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साधन लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तुम सर्व कला क्या ज्ञाता। माधव हम तैसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर दे सार। तुम समसाजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणिया रे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना। तुम करो पला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कौ नानका मिया हवाला राख संतन कह पाछे। सोठ महला पंजवा कर दूजा मात कर मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर था लहर मैं तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोरा रहा कीते को मेरा सम्मान करना आर्त्र जाने तू दाता मागन को सगली दान दे प्रभाने। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा चर चल तुम्हारे रूडो गुड़ो गैर गंभीरो ऊंचो गम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो त्यो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेख थी नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोठ महला पंजवा

संतन से मेरी लेवा देवी संतन से ब्योहारा संतन से हर हमला काटिया हर भगत परे पंडारा संतन मौका पूंजी सौंपी त्यों उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहा करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महानंद पय सुख पाया संतन कह प्रसादे कौ नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्माते सोठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छट जानी राम नाम संकर व्यवहारा पावे पद निर्वाणी प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेसा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लो मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाई हो रेण तू सगल की मेरे मन तो आनंद मंगल सुख पाई है काल न पाना अंतर भेद जाना ताकि कर मन सेवा कर पूजा हूँ मैं मनवा काल मूर्त गुरुदेवा गोविंद मोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नाम वलेवा नाम नानक प्राण आधारा सुठ महला पंजवा मृतक को पायो तनसासा विश्रुतान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पैसोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ दुख सोग काटायो डेरा नंग आनंद मंगल विश्रामा मन वांछित फल मिले चिंता पूर्ण होए कामा इहां सुखा गए मुखु जल मिट गया मन जाने निरपो पय हृदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाने उठत बैठत हार गुण गावे दुख दर्द परम भागा कहो नानक साके पूर करमा जाका गुर चरनी मन लागा सोठ महला पंजवा रतन छाड़ कौटी कौडी संग लागे जाते कछु न पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरो हर हर नाम परानी बिन सकाची दे अज्ञानी राव मृग कृष्णार सुपन मनोर साकी कछ न मडाई राम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हाव हाव करत बिहाय वरदा जी को काम न कीना तावत तावत न तृप्ता स्या राम नाम नहीं चीना साध विकार बिखै रस मातो संख खते असंख खते कर फेरे नानकी प्रभ पाए बिनंती काटो अवगुण मेरे सोठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारे महाभिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परमांधेरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अघाई जात का तपूर रहे ओ परमेश्वर का ते आवे का ते जाई जब तब संयम ज्ञान तत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की फसा कौ नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पय बिगासा सोठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सौ सुख सहज आनंद मंगल रस चर्ज पई बढ़ाई रहाओ गुर की शरण पै पै नासे साची दरगह माने गुण गावत राध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सत बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सुवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उतरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद से ती कर आया सुठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम दिन नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अबनासी ताको बिगड़ न को लागे जो सदगुर अपने राखे चरण कमल बसेरे दे अंतर अमृत हरस जाखे कर सेवा सेवक प्रवे अपने जिन मन की इच पुजाई नानक दास ताके बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई सुठ महला पंजवा
माया मोह मगन अंधियारा देवन हार न जाने जियो पिंड साज तिन जिन रचिया बल अपनो कर माने मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किश करे सोई सोई जाना रह न कछु छानी रहा जेह वासवाद लोभ मद माते उपजे नेक बिकारा बहुत जोन परम सुख पाया हूं मैं बंधन के पारा देख वाड़ अनेक पड़ दे मैं परदारा संग फाके चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा टाके दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तोंबे ने ओठ नकाई काढ़ ले हो संसार सागर में नानक प्रभु सरनाई सोठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो नित प्राणी हर साचा सिमरो पाई सत्संग सदा सुख पाई है हर बिसरन कबो जाई राहो अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीव है जिसनु कर्म प्राप्त हो वै सो जन निर्मल थी वै बिघन बनासन सब दुख नासन गुचर नी मन लागा गुण गावत चौथ बनासी आंदन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानको सो प्रभु आबेली सोठ महला पंजवा पंच पदा बिनसै मो मेरा यार तेरा बिनसै अपनी तारी संतो हब तावो कारी जित हो मैं गर्भ निवारी राव सर्वभूत पार ब्रह्म

औखद नाम निर्मल जल अमृत पाया गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

बच्चा बच्ची ते उन्हां दे माता पिता जी खड़े होने की कृपालता करन जी। सत्कारयोग नवनीत सिंह जी अरदास बेनती करनगे।

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद

0: He's always along with you. Never feel yourself कि मैं आई एम ऑल अलोन, कदे महसूस ना करो. इन्ना दौलत वंडन लई किसे कर्मा वाले नहीं मिलती है, हजारां चो नहीं लखां चो एक नूं. ये कहूंगा तुहाडे कोल तां इन्नी दौलत है, तुसीं वंडो. नैवर कीप इन योर माइंड कास्ट क्रीड कंट्री कम्यूनिटी एज ए ह्यूमन बीइंग. तुसीं वंडदे जाओ दौलत ते शोहरत, दासी बन के तुहाडे कदमां ते खड़ी होएगी. दुनिया इस नूं भालदी रह जांदी आ, अप टू द ग्रेव, मिलदी नहीं, तुहाडे कदमां च आएगी. इन्हां लफ्ज़ां नाल मैं तुहाडे नाल समाप्ति करदा, सांझ पाउणा. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. तुहाडा आना साडे सिर मत्थे, जी आया नूं, जी आया नूं. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का
1: फतेह. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. बहुत ही बच्चों नूं प्यारे लफ्जां दे विच हरभजन सिंह जी आशीर्वाद दे के गए हैं. तो फिर दास वालों काका जसराज सिंह कालू ते बच्ची बहार कौर दा जो शोभनंद कार्ज होया, दोवां ही परिवारां नूं लख लख वधाई होवे. तो अज दा कार्ज इत्थे समाप्त हुंदा है. जिहड़े बच्चे बच्ची दे माता पिता हन उह इत्थे ही सगन दे सकदे हन, बाकी दी सारी संगत बार टेंट दे विच उत्थे तुसी प्यार देना सारे ने. सो इत्थे ही समाप्ति है. फिर सारे जिहड़े तुसी इस खुशी दे मौके दे पहुंचे हो, परिवार वालों सारे दा धन्नवाद कीता जांदा है. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह.

0: Hương Guru, Hương Guru, Hương Guru, Hương Guru, Hương Guru, Hương Guru, Hương Guru, Hương
1: सारे बोल के सुनो जी, ये है सिमरन जड़ा हुणे आपां पढ़िया सी। इहदा फायदा की होना सानू, साडे मन नू कई जन्मां दी मैल लगी विचारां दी, किते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होआ स्या, नू आपां कहिंदे शाह काला हो गया। फिर सतगुरु धोण दा तरीका जपजी साहब च दसदे गुरु नानक साहब, कहिंदे जिद्दां तुहाडे हथ पैर घटे मिट्टी नाल लिबड़ जांदे, पाणी नाल धो लैंदे हो, कपड़े लिबड़दे आ साबण ते पाणी वरत के तुसीं धो लैंदे हो, इसे तरह आ नाम जो है ये साडे मन नूं धोएगा, मन नूं निर्मल करन लई उह वाहिगुरु दा नाम है। की लिखिया उहनां ने, किंदे भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओ धोए, भरिए मत, ये मन की मत की गल कर रहे, भरिए मत पापां के संग भरी पई है, कहिंदे ओ धोपे नामे के रंग। अज जो तुसीं, क्योंकि मन साडा नेत्रां च है ना, ये डिवाइन लाइट है, जब तुसीं अखां बंद कर दिओ कन्नां च आ जांदा, उदों फिर जदों ये मन सुणदा वाहिगुरु बोल के इहदे नाल धुपणा शुरू हो जांदा, ओह धुप है नामे के रंग। फिर सानूं सतगुरु समझाउंदे कि इहनूं तुहानूं जिहड़ा मिलाप दा रस्ता दस्सिया हुणे आपां पंजवें पातशाह जी ने, कहिण लगे भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलण की इह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल धाम। जिहड़ा तुसीं जप रहे हो इहदा फल की मिलेगा, कई पुछदे आ जी इहदा फायदा की है, उह तुहानूं नाम दा खजाना मिल जाणा वा, जिहदे नालों जन्म समय लिब टुट गई ते असीं दुखां च पै गए, उहनूं सुख सोहिलड़ा लिखिया। अज उत्थे गुरबाणी च की लिखिया जी, उहनूं सुख सोहिलड़ा हर ध्यावो, इह तीजे पातशाह दे वचन ने। हरी दा ओ जेड़ा नाम है उसनु सोहिला भी कहा, जिन्हें तुहानू सुखी कर देना, सोहिला हुंदा नाम, ये तुहाडे सारे दे अंदर है। आपां पढ़दे हां ना, जय कर कीरत आखिए करते का होए, विचारो तित कर गावो सोहिला। ते जदों प्यार नाल कहना हुंदा ना नाम नू सोहिला कहिंदे आ, ते फिर जो होर प्यार नाल कहना फिर सोहिलड़ा कह दिंदे, राड़ा लाता। अज कहिंदे सुख सोहिलड़ा हर ध्यावो, इत्थों तक तुहानूं लै जाणा वा आ जिहड़ा सिमरन कर रहे हो, ते गुरमुख हर फल पावो, फल भी मिल जाना। यही फल असीं गवा लिया सी जन्म समय वाहिगुरु नूं, वाहिगुरु बड़ा वड्डा फल आ, उहदा नाम भी फल आ। कहिंदे फल की मिलना, तुसीं आपां कोई भी कम करदे आ ते उहनूं आपां चाहुंदे आ ना वी सानूं कोई आउटपुट मिले इहदी कम दी, है ना, ते उह पुछदे सिमरन करन दा की फायदा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹ ਸਮਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ

अखा बंद कर रखी पत अखा बंद रखो बोल के सुनना गुरु प्यारे हो जिस मन नूं तुसीं धो रहे हो ना साडे नेत्रां च बैठदा जोत है ना जोत दो हिस्सों च वंडी जांदी है फिर इहनूं एक करना पहला एक उदों होना जदों अखां बंद करोगे फिर जोत कन्नां च एक हो जांदी इहनूं सुरती कहिंदे आ ते सुरती नूं वाहिगुरू नाल जोड़ दिओ इन्ना ही काम है ना ते जोड़न दा फिर तरीका वा कि फुरना ना आवे कोई अंदर नूं साह जांदिआं वाह सुनना बाहर नूं गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

युग में है राम नाम निस्तर। हर युग युग भगत उपाया पैज रखदा आया, राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया, जिन्हें नाम जपया हर किसी भी युग च चाहे जपया। साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशी साच रहे, कहते सतयुग दे विच सारे नाम जपदे ही ते उहदे च समाए रहिंदे सी। सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर गुरमुख भगत होई, घर घर दे विच बंदगी सी। पर वेखो हर एक युग च नाम नूं वड्याई बख्शी है सतगुरु ने। हर एक युग च सब को सच समावे, रिग कहे रहा भरपूर। फिर द्वापर आ गया, त्रेता आ गया, त्रेते दे विच रिग वेद सीगा, वेद चार होया ना, ये चौं युगां च दस्या वा। शाम वेद, रिग वेद, जजर वेद ते अथर्वण, चार ही वेद होया। ते सतयुग दे विच भी उन्हां च भी ज्ञान दिता होया सीगा, है ना। पर नाम तो बिना नहीं, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाहीं, फिरे ज्यों बिताले। साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशे साच रहे, सबको सच समावे, सारे सच समाउंदे सी, सिखे गए सी। रिग कहे रहा भरपूर, उन्हें भी कहा भी सारे अंदर भी ते बाहर भी तुहाडे वाहिगुरु ही है। रिग कहे रहा भरपूर, राम नाम देवा मैं सूर। लोकी देवत्या नूं पूजन लग पए ना, इहदे च त्रेते च आके, ते उह कहिंदे देवता ते उह आ देवता सब तों उत्तम, देवा मैं सूर। जे कहते उसका ना लोगे तो तुहाडे पाप खत्म हो सकते, जे तुसीं उहनूं छड्ड के तुहानूं देवत्या पिछे लग गए। कहते ना ही लिया प्राश्त जाए, नानक तो मुखंतर पाए। उदों भी मुक्ति नाम चो ही है ना। की क्या उन्होंने ना ही लिया, आज राजा पर वाह गुरु प्राशत जाए, प्राशत दे पाप खत्म हो जाएंगे। ते हुण भी इहो कहा ना, कहिंदे एक बार तुसी बोलो ना हर, ते कहिंदे मिटकोट कसमल जात है ना, एक बार वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। द्वापर दे विच यजुर्वेद सीगा, वेद उदों कृष्ण जी दी उदाहरण दित्ती है कि ये माया ही सानू हर युग च घेरदी है ना, जिहदा खेल फैगरू ने बनाया। ते ओ कृष्ण जी ने फिर इदां सिमरन कर करके उन्हूं जित लिया। जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पिया, कहिंदे जादमां दी कुल दे विच इक कृष्ण होया, कहिंदे उहने इहनूं छल लिया सी चंद्रावल। इत्थे कहा जुज मैं जोर, इहदा जोर वार है, जोरा वार है चंद्रावल, ये माया किसे को जित्ती नहीं जांदी, बहुत जोरा वार है। पर यह संगत ये पांच पोते है ना, माया के पांच पोते रखे उन्हें, पंच पूत जने एक माई, पंजे महाबली है, ये जितने नहीं देंदे किसी को भी। पर कृष्ण जी ने जित लिया, वेख लो गुरु नानक साहब ने लिखे भजन ने, जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पिया पार जात गोपी लै। और जो फिर जित जाते तो फिर निज घर च जाते, उतो नाम मिलता वा, तो वह फिर आके गोपियां नूं उन्हें वंडिया, दसिया आके जिदा हुण आपां इक दूजे नाल सांझा करने, कहिंदे पार जात नाम नूं कहा वा। हुण जिहड़ियां कहानियां बनाईआं उन्हां विचारां नूं पता नहीं, उह कहिंदे जी उह रुख लिया, इस सतखंड च रुख है ही कोई नहीं गा। पार जात हर को नाम, काम धैन हर हर गुण, आ जिहड़े अज तुसीं काम धैन ते पार जात ही कर रहे हो, वाह गुरु इह लैके आयो नाम। पार जात गोपी लै आया बिंदरा वन में रंग, आ नाम का रंग लाया सी उन्हां सारे नूं, जिहड़े उन्हां चेले सी उन्हां नूं गोपियां कहिंदे हुंदे सी, गुरु कृष्ण जी दे जिन्ने चेले सी उन्हां नूं सारिआं नूं नाम का रंग चढ़ाया। बिंदरा वन में रंग किया है ना। फिर हुण कल युग चलदा, कल में वेद अथर्वण हुआ है ना, इहदे विच अथर्वण वेद चलिया। फिर नाउ खदाई अलो पिया, इतने नाम बदल गया फिर रब का, अल्लाह अल्लाह कहन लग पे। फिर की जपते सी अल्लाह अल्लाह, हां जदों सारे मुहम्मद साहब तो बाद चलिया, सारा दशमेश पिता जी ने
ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ।